आज या तावना तहने अरुति आज यान ये युथानास अश्नी सेंट्रल युथा आज आयुगता